हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय पर सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: कोड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी

0: भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधनवार।
3: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

वंदनवार कार्यक्रम में सबसे पहले आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

दिन देश की सुरीली धड़कन विविध भारती झरोका में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी सुबह 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। 7:00 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, हमें राही प्यार के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से। सुबह 8:15 पर त्रिवेणी का प्रसारण होगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 10:00 पिटारा में सेल्यूलाइट के सितारे। इस कार्यक्रम में सुनिए बांसुरी वादक पारसनाथ

से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम होगा। दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1 बजे से तय करेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर के साथ सुरीले गानों का सफर। 2 बजे त्रिवेणी कार्यक्रम सुनिएगा। 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनवाए जाएंगे। 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त है। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4 बजे पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर गायत्री आहूजा से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए रागों पर आधारित फिल्म संगीत राग अनुराग कार्यक्रम में। रात 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका चिट्ठी। लेखक हैं नंदलाल पाठक और निर्देशक हैं सीबी मंडाली। 8:15 पर सुनिए चित्रलोक। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनिए जो केंद्रित है अभिनेता आर माधवन पर। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले।

11 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में तबले का दौर इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अतिथि श्री रविंद्र खासनीस जी से। रविंद्र जी, जब संगीत की रचना होती है तो उसमें लय ताल का विचार करना क्यों जरूरी है?
2: देखो, सुर और ताल
1: जी,
2: ये संगीत की बुनियाद है। मतलब वो एक रथ के दो पहिए है, और जब वो दोनों पहिए सही

0: तरीके से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तभी वो रथ आगे जाता है या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। मतलब संगीत की जो मधुरता है वो सुर और ताल है। तो सुर और ताल में हम अभी तो ताल का विचार कर रहे हैं
1: जी,
0: तो ताल का जो अंग है वो है लय। अभी किसी भी गीत को हम लोग जब सुरों में ढालते हैं
1: हाँ,
0: तो वो एक गीत की तर्ज बन गई। अब वो तर्ज बनने के बाद अक्सर जो संगीतकार होते हैं वो इसका विचार जरूर करते हैं कि ये जो संगीत हमने दिया है इसको किस लय में होना चाहिए, मतलब उसका ताल कौन सा होना चाहिए और वो ताल जो है वो किस लय में होना चाहिए
1: जी।
0: तो जैसे हमारा जो काव्य है जिसकी संगीत रचना की गई है तो काव्य की अंदर ही उसके एक लय छुपी रहती है।
1: अच्छा,
0: मतलब हर कोई काव्य जो है वो काव्य एक लय भी दर्शाता है, वो लय जो है उस लय को संगीतकार पकड़ता है। दूसरा ये है कि गाना जो है वो किस लय में अच्छा लगेगा सुनने के लिए। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग के वक्त इस बात का ज़रूर विचार करते हैं कि ये गाना गायक जो है वो किस स्वर में गाएगा।
1: अच्छा,
0: मतलब जैसे काली एक काली दो सफ़ेद एक सफ़ेद दो, ये जो स्वर है
1: जी,
0: तो इसमें कौन से स्वर में उसका होना उचित रहेगा, ये जब विचार आता है उसी के साथ में
1: जी
0: उसका लय क्या होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में टेम्पो कहते हैं
1: जी।
0: तो टेम्पो ऑफ द सॉन्ग, गाने का लय कौन सी होनी चाहिए, उसका विचार जरूर किया जाता है। अभी ये लय की जो विविधता है तो वो विविधता हमको एक अलग रंग उसमें लाती है गाने में। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, आज गावत मन मेरो झूम के
1: जी,
0: ये जो बैजू बावरा फिल्म का गीत है, तो ये गीत जो है वो विलंबित तीन ताल में है। मतलब तीन ताल की जो लय है उसमें वो विलंबित लय है। अभी दूसरा गीत है कि आए सुर के पंछी आए, सुर संगम फिल्म का ये गीत है, तो ये जो गीत है ये भी तीन ताल में है लेकिन ये मध्य लय में है। और पिछले एपिसोड के अंत में हमने जो सुना था मैं क्या जानू क्या जादू है, वो द्रुत गति तीन ताल है। तो ये जो अलग अलग रंग आते हैं वो लयकारी जो हमने उसमें रखी है
1: जी,
0: संगीतकार ने जो रखी है, उससे उसका मज़ा आता है, गाना सुनने का मज़ा उसी पर निर्भर करता है
1: जी। जी जी,
0: मेरे ख्याल से हम लोग एक उदाहरण के तौर पर आए सुर के पंछी आए जो मध्यलय का,
1: संगम फिल्म का ये जो मध्यलय का गीत है
0: जी,
1: इसमें थोड़ा मंद्र लय का भी मजा है और द्रुत लय का भी मजा है।
0: हाँ,
1: तो यही गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: श्रोताओं, तीन ताल का जो उदाहरण हम देख रहे थे, इसके लिए राग मालकांश पर आधारित सुर संगम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार पंडित राजन मिश्र। रविंद्र जी, त्रिताल के कोई और अन्य आविष्कार भी हुए हैं जिसे फिल्म संगीत में इस्तेमाल किया गया?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि नाट्य संगीत की परंपरा महाराष्ट्र में रही
0: जी,
1: तो नाट्य संगीत में तीन ताल का एक रूप बदला हुआ है।
0: हाँ।
1: कैसे है? अभी जो तीन

0: अब ये तीन ताल जो है इसी का अद्धा
1: जी,
0: अद्धा मतलब धा, उसका एक अवग्रह के बाद में धा।
1: अच्छा,
0: तो अवग्रह जो है
1: हाँ,
0: उससे वो होता है अद्धा। तो ये कैसे होता है, मतलब धा धिन धिंदा का रूप कैसे बदला, धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा। तो ये जो है धा आ धिन धा धा आ, तो ये आकार है उसके बीच में। तो उसमें क्या होता है कि वजन बदल गया, उसमें कैसे धा धिन धिन धा, वो धा धिन धा धा धिन धा धा। तो ये जो बदला हुआ वजन है इसका इस्तेमाल करते हुए भी गीत पहले जैसे नाट्य संगीत में प्रचलित थे
1: जी,
0: तो फिल्मों में भी वो उस तरह के गीत आए, और अद्धा तीन ताल के गीत तो काफ़ी अच्छे अच्छे गीत है जी, उसमें
1: एक निराला और सुंदर रिदम पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है।
0: जी जी जी।
1: तो कोई ऐसा गीत जिसमें अद्धा त्रिताल हाँ, हमें सुनने को मिले?
0: हाँ बिल्कुल है, बैया ना धरो, ये जो है दस्तक फिल्म का गाना
1: जी जी,
0: लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ
1: बहुत ही खूबसूरत गीत है जो राग चारुकेशी पर आधारित है
0: जी।

0: श्रोताओ, मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ दस्तक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता जी के स्वर में। इस गीत में अद्धा तीन ताल का सुंदर आविष्कार हमने देखा और इसी के साथ आज श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत से सवारा था सचिन देव बर्मन ने।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: फिल्म पटरानी का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोलों को संगीत में पिरोया था शंकर जय किशन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: मूल्य विसर्गीत कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत।

फिल्म जलदीप का ये गाना आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा और की आवाज में। कैफ इरफानी के बोल थे जिन्हें सुरों में पिरोया था स्नेहल भाटकर ने। और अब सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। बी डी मिश्रा के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है एस एन त्रिपाठी ने।

आइए अब सुनते हैं फिल्म चार मीनार का ये गाना आशा भोसले की आवाज में। विश्वामित्र आदिल के बोल हैं, संगीत है शार्दुल क्वात्रा का।

0: फिल्म सीआईडी के इस गीत के साथ ही अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, विको टर्मरिक क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। विको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

अभी आप सुन रहे थे अप्रैल फूल फिल्म का गाना रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत में पिरोया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म धरती का ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं।

आइए अब आपको सुनवाते हैं गवार फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल है और नौशाद का संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुबह देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ फिल्म गीत का ये गाना। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थीं। और आइए आप को सुनवाते हैं सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है रूठा ना करो।

0: माशाल्लाह जुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह
1: आपकी बातें वल्ला वल्ला इतनी मोहब्बत

0: आज का चेहरा माशाल्लाह, ज़ुल्फ का पहरा सुभान अल्लाह।
1: इस गीत के साथ ही अब आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर डॉट जी

0: govi.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा

0: ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवान्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान

0: के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है।

0: विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा, इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है, सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है, यहां तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा।

साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डर्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चैन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है। और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।

साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सबसे बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए, कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में? करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी प्रकृति माँ के लिए और आपकी भारत माँ के लिए, सबके लिए सुरक्षित है।

0: आज्ञा दीजिए विधि जैन को आज की इस त्रिवेणी से। नमस्कार।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
2: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है। अब एक नए वक्त पर अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें। द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा, आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
3: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए

सुप्रभात, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का गाना। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, गरिमा वाहल और सिद्धार्थ सिंह के बोल हैं और विकी प्रसाद का संगीत।

0: फिल्म आकर्षण का ये गाना आपने सुना पंडित चुन्नूलाल मिश्रा की आवाज में। प्रसून जोशी के बोलों को संगीत से सवारा था शंकर एहसान लॉय ने। चित्रलोक कार्यक्रम में आगे कुछ और गीत लेकर हाजिर होंगे इस अंतराल के बाद।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
5: पिछले 6 वर्षों में PM स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। PM स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सात खून माफ फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गीत में पंडित विश्वमोहन भट्ट की मोहन वीणा भी आपने सुनी। गुलजार का लिखा ये गीत था जिसे संगीत से सवारा था विशाल भारद्वाज ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बर्फी का ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। सईद कादरी के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

0: स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, शांतनु मोहित्रा का संगीत, ईशान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना पीके फिल्म से। चित्रलोक कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: आपका अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर। रिकॉर्डिंग होगी दो दिन, बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512 254 1818 पर।

चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ, इरशाद कामिल ने लिखा है और ए आर रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफ़ी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसे सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ।

0: फिल्म खामोशियां का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
2: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है, उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
0: दोस्तों आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार हैं सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया।

हीरोइनों की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माई गॉड में इस गाने को विशेष तौर पर शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब

2 जून 1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़े उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

सोनाक्षी सिन्हा की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में और भी हैं, जैसे कि वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी फिर भाग जाएगी, मिशन मंगल, दबंग 3।

0: दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का। जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे

0: के लिए वहाँ, हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
1: वाह वाह।
0: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
1: जी
0: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
1: जी।
0: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा मैं माफी चाहता हूँ, तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा
0: वर्चस्व रहा है
1: जी।
0: दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह।
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा।
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी जी
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी जी
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गज़ल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर।
1: ये सफर इस तरह से चलता रहा
0: जी दिल्ली।
1: हमारी बातचीत के सफर में। अब एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: जरूर
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं
0: जी,
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं।
0: जी जी जी
1: है ना
0: जी, जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है
1: क्या बात
0: पिताजी के साथ।
1: वाह।
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
1: वाह,
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
1: जी जी जी जी।
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा।
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहाँ से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की
1: जी।
0: और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था

0: तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल,
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें। अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं,
1: जी जी
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं।
1: जी जी
0: और फिर और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफ़ी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफ़ी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें,
1: वाह,
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था,
1: जी
0: मेरे भाई ने राग हंसोधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है,
1: वाह वाह वाह
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी जी क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊंगा।
1: जी।

0: पर जी बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नामचिन काम करने वाले म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो

0: फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था। तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई, वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप ज़रूर भेजिए। वहाँ से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
1: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
0: मुंबई आना हुआ
1: जसपाल मोनी जी।
0: हाँ, इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
1: जी, जी।
0: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
1: जी।
0: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
1: त्याग करना पड़ता,
0: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
1: जी
0: उस चीज में मेरे लिए।
1: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
0: बिल्कुल।
1: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
0: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
1: जी,
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी,
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माई गॉड हो,
1: ओ माई गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी जी,
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
0: जी,
1: जी जी।
0: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
1: जी जी, राजश्री प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी
1: जी,
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: बाबा
0: मुन्ना भाई MBBS रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी फेरिस है,
0: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मन मर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चर है
1: जी, बिल्कुल
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
1: हाँ,
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
1: जी जी बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सो इट्स माय पार्ट ऑफ जर्नी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूँ
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूँ, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूँ
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट है।
1: और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक, घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं, और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: हम बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है

0: जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
1: वाह,
0: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री मुंबई इंडस्ट्री के
1: मेटल फ्लूट बजाया करते थे,
0: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
1: जी, बिल्कुल,
0: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
1: वाह,
0: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है,
1: जी जी,
0: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
1: डिफरेंट है, अलग है, बिल्कुल,
0: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
1: ये भी बजाना होता है,
0: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
1: जी,
0: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
1: जी,
0: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
1: जी,
0: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी।

0: उसका ऐसा साउंड।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: है। ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा,
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में, वो एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए क्योंकि मैं दो दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी,
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ, ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी,
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गाऊं।
1: जरूर, बिल्कुल, बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है।
1: हाँ हाँ,
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ,

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंदी कर लेता।
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: सर, एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी,
1: मैं
0: जी।
1: बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था। इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में एक प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने। तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा हूँ। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
0: बिल्कुल।

0: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
1: जी,
0: और बहुत अलग अलग चीज़ें मैंने इन्जॉय किए ज़िंदगी में।
1: क्या बात है।
0: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
1: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
0: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
1: कहाँ से लाए?
0: नॉर्मल जहाँ से मैं, ये तो मैंने खुद बनाई हुई है।
1: अच्छा अच्छा।
0: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
1: जी।
0: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
1: जी जी।
0: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है
1: बिल्कुल,
0: इसका साउंड में सुनाता हूँ आपको
1: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज़ कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाई मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: तो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है
1: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी, म्यूजिक
0: में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: आइए
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा।
2: पर आपकी गिनती देश की शान जनगण,
1: सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादानी सा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं।

0: जी
1: सपोज कीजिए सुबह अगर आ गए तोड़ी है
0: जी जी,
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है, ये भी सारे गाँव है,
0: जज्बात आ गए,
1: पर इसमें प्यार है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
0: जी,
1: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
0: जी जी,
1: वो नहीं होती है, तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा, तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
0: जी,
1: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
0: यस,
1: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
1: क्या बात है,
0: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है इस महफिल को यहाँ रोकते हुए
1: आपका आपका और इस जगह का जादू ऐसा है कि मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव वैसा रहता है।
0: मैं समझ सकता
1: आपका
0: हूं।
1: भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
0: जी,
1: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रित किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं
1: जाने, नहीं जाने।
0: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
1: तो
0: और
1: मैं
0: एक गाने की फरमाइश कीजिए।
1: हीरो,
0: देखिए फरमाइश भी आ गई।
1: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
0: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
1: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
1: कॉम्प्लीमेंट है।
0: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
1: जी,
0: और आपको भी हीरो कह दिया है।
1: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
0: जी
1: सो ये हीरो धुन
0: जी
1: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
0: शुक्रिया,
1: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी।
3: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
2: आकाशवाणी के विविध भारती को
3: बिल्कुल
2: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
3: बिल्कुल।
2: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
3: बिल्कुल, शुक्रिया।
2: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
3: जी।
2: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वाले के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका। फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ।
3: जी,
2: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है,
3: बिल्कुल,
2: इसको हम विब्राटो कहते हैं।
3: बिल्कुल।
2: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसा दे रहा था मैं बताता हूँ आपको।
3: जी,

0: वाइब्रेटो इतना दिल से आ रहा
1: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
0: था। ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो,
1: जी
0: जब उन्होंने
1: अरे
0: सुनाया तो मैं पागल हो गया था हंस के।
1: बाप रे,
0: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
1: जरूर
0: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी,
1: सिंगर
0: जी,
1: गा
0: जी,
1: जाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया है, फिर उसको रखा है।
0: जी
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: गाने में, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: चलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर रिकॉर्डिंग होगी दो दिन बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512 254 1818 पर।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज़ में। शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और खान साहेब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज़्म, जो कि है उर्दू गज़ल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज़ में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल्स एल्बम से लिया गया है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और, आपका डीडी फ्री डिश।

आज के कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म एहसास एल्बम से तलत अजीज की आवाज में सूरज सनीम के बोल और ललित सेन के संगीत के साथ।

0: दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत, आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहां ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुबर्ता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की

0: गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजाकर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। काला पानी फिल्म का ये गीत हम सुनने वाले हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
6: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।

यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव वर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव वर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव वर्मन ने ही।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देवबर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देवबर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देवबर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: लिंग।
1: हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से, गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत। प्यासा फिल्म से गीता दत्त, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ है। सुनते हैं इसके कुछ अंश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूँ विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नजरों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं, दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है। जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है। हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यमय इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नज़र से गुफ्तगू के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमय इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की खामोश भाषा और प्यार के नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह, कश्मकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा, शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगाव हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस

शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिखकर देखो क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, पर अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा मेरे

इबारत है, आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इज़राहे मोहब्बत होती है, बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं, हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो, या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो, या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो, तो बताइएगा ज़रूर ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए, तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना, बड़ा बड़ा ख़तरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज़ किसकी है?

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि ये मीठी सुरीली सी आवाज़ कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और

और बताया कि आवाज मोहम्मद रफी की है। अब ये इजराहे मोहब्बत जो है, आप सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफ़ी की भी आवाज़, भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नज़र आते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज़ झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं, ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत, हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंदी आवाज़ अनमोल रत्न रफ़ी साहब की है, बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दें ना, मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे ज़माने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं देखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की उंगलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिसारे क्या करते। जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा, यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख लें, पर वह भी एक समय के बाद, कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है। देखिए, अब अगर वही हैं तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी हैं तो कहना बनता नहीं है। जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें। और एक बार हमने लिखा भी, और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है। जी बस, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी वो उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी, वाकई में मेरे आंखों के सामने बरबस ही अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूँगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, आज विश्व साइकिल दिवस है तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल, आपकी इनायत, आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, अगर उस जमाने में ना होती तुम तो हमारे फूट जाते कर्म, खतों के इंतजार में रहते हरदम, जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी, दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम, अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है, और ये खत कितने काम की चीज़ रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम हैं

उस प्रेम के बारे में, जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नजाकत इनायत और तड़प का जिक्र है। जहां दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह, बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहाँ दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार है, तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है, जैसे मैंने अपनी पहली खत के बारे में बता दिया जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये जमाना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विधि जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं, पर दिल में रहे तो ज्यादा अच्छी हैं। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटकट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नजर उतारना, और कभी कभी उनको क्या खाना है, इस बात का भी एहसास कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी बीच पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूँ कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नजर आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो ना समझ सके जो दिल के पास था, हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे

नाम जो है ही रखा ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणे जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एक मात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्यार कि प्यार इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है। जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था। माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था। और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रहिए, प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की के दो छोटे भाई, लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है, हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर। दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहाँ उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है, हमारे श्रोता लिखता है किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है, तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है, जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुँचते हैं, यानी कहीं बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है, शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कने ज़्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज़ पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हश लफ्ज के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाएं, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं, पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको, जब आपका जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने वाले घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको टर्मरिक, हल्दी चंदन के गुणों से भरी सुंदर निरोगी त्वचा के लिए।
2: पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया। उनको सुनकर मुझे कुछ मुझे होने लगता था और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे। मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब वो उनको देखती तो खुशी होती थी। पर ख़त तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता। आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था। पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं। उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है।

घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया है कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक ज़माने में खूब लिखे हैं और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसी भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाऊँ उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान वो भी, लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहाँ डाक किया सब चिट्ठियाँ डालकर जाता है, हमने पढ़ा सब जितने दो ही और शायरी उसे आते थे, उसने लिखा था नीचे आपकी रानी लिखा था, फिर हमने उनके गांव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं और अगला गीत बस वही है खत के बारे में, लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं और पहले का ज़माना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए, तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत, ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा, खत तो लिखा लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था, ज़रूर से साझा कीजिएगा।

ये खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिरी अंतरे में आशा भोसले गागा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि यहाँ

0: इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है? हाँ, आजकल ये बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना जरूर जाना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है कि पालेना ही प्यार है, प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते हैं तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में दुख। जी बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया, तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो सेवा नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ कि उनका उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: वैसे ही प्यार है आपका और हमारे बीच में। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या, उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज़ बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए। और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं। अब इसके साथ मुझे एक चीज और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था।

अपने दिल की बयां कह रहे हैं और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई। देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए। और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं। जी बढ़िया है, कहना चाहिए। और इशारों में बात थी, अच्छा मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना। उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है। आपने भी लिखे, हमने भी लिखे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल शारो इशारों में। रफ़ी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, लाड़ प्यार दर्शाता है। लेकिन आज कल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं। तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, जब हम फ़ोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फ़ोन नीचे रख के कॉल चल रही है। मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलते थे, फिर सो नहीं पाती थी और फ़ोन कट जाता था। जी कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था। और चलिए, अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है। और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था। आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं। तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। ये लिखते हैं कुमार बारा बंकवी। और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आज्ञा दीजिएगा इस गीत के साथ।

और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्ज जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
2: वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है। ये यहाँ तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है जिसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा।

साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डार्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चैन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल, और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है, और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।

0: साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सबसे बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में। करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि ये आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी प्रकृति माँ के लिए और आपकी भारत माँ के लिए, सबके लिए सुरक्षित है।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

0: आपका अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर रिकॉर्डिंग होगी दो दिन बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512-254-1818 पर। हेलो कानपुर।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस

0: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.aiar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद

0: किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है, क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना

0: बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
1: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही

सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीन गीत आदित्य की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर

0: ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
1: महक है वो आज भी है। खुशबू है ना, आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है, और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं,
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं। ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
1: लौकी है,
2: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के साथ बड़ी समस्या है कि बनाएं क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पतिदेव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
2: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
1: अरे सारा मत बताओ।
2: और इसके अलावा कौन सी सब्जी है और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें, तब तक ये गीत सुन लेते हैं सखियों के।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
2: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी,
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेम पूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने

0: में भी मंदा किरणी जी बहुत मदद होता है।
1: बिल्कुल,
0: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वही कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
1: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
0: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
0: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
1: चलिए

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्ते में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं, ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्मपत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं। और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्मपत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते

0: बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: बच्चों को दें।
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम, जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना, जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर,
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है दुल्हन का नया घर, और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है, बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।
2: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
2: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
1: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
2: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
1: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सजती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
2: हैं, रख लेते हैं वो
1: जी।
2: भी हाँ।
1: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
2: हालांकि

0: घरचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घरचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
1: घरचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती हैं। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियाँ पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खासतौर पर जामनगर राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
0: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घरचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेतर साड़ी के ऊपर जो है घरचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
1: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घरचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
0: होता है। बिल्कुल, और घरचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
0: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की, कुछ हम कहेंगे कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे।
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में जब हमें पहली साइकिल मिली थी, तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है। इसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे कन्याश्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है। और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते। अगर बच्चे ने कह दिया मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी में बयान नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे। गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता की दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
0: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
2: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती।
2: निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
3: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है

0: और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह से,
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई भी है। वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चिले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चिले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कड़ाही में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पीसें, पीसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जंजल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सिख सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय

0: ये वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष यानी कि अली यावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफ़ी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना, अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपका अपना चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर। रिकॉर्डिंग होगी दो दिन बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512 254 1818 पर।

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज़ हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर

0: रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेस करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
1: रिश्तेदारों को
0: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4-5 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, and Gallaudet University में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके, एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं। बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
0: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके, अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स है। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
0: एग्जैक्टली
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो।
0: हाँ जी, किशोर कुमार जी
1: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों के टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
0: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
1: राइट राइट राइट, हाँ,
0: तो उनके लिए भी
1: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग, कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके। तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके। तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
0: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
1: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें। क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस, इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है। तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ईएनटी के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
0: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
1: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। पर ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहां पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप्ड नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
0: बिल्कुल,
1: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर

0: प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स. ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत जरूरी है. दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जांपल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके, बुक इस तरीके से खुलती है. ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं. कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है. और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे.

0: प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा,
1: अभ्यास होगा।
0: हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊँ, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते, वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड, ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग, आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक, तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं, अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट, एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा। ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग, एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज। ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं, नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच, बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो, तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं। बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं। वैसे
1: बिल्कुल, यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल
1: ए दिल है मुश्किल जी ना, ये जी सुनते हैं ये गाना।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी, देश के विकास में सहभागी बने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल हैं, तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
0: बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज टोटल

0: फ्री। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एडुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है। ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज़ नो इंटरप्रेटर। ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना ज़रूरी है। थर्ड इज़ द एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते हैं तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ पे और लाइन अप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
1: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है, बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू। ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर।
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी। अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव। एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट।

0: जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक। हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूँ कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना हैव अ वर्टिको इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग विच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट। फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहाँ पे चलती है, फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक, ओके। देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके। और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल। सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं डिप्लोमा से के पीएचडी तक, एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच, तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं।
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है, आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे, यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ।
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: श्योर।
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, I just like him or like his voice a lot. So any song of Jagjit Singh is okay with me.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है।
0: All good.
1: तो सुनते हैं ये।
0: ठीक है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी, और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम, एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम, दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग विद एवरीथिंग, सो थैंक्स टू देम। थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स कि आप सुने, और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
3: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्ते, गुड इवनिंग। कानपुर FM 103.7 पर आ गई हूँ मैं, आपकी रेडियो संगिनी रंजना, लेकर उम्मीदों का खजाना।

भाई शाम ढले उससे पहले हम आपको बता देते हैं आज देर रात तक प्रसारित होने वाले हमारे प्रोग्राम्स। तो अभी बजे हैं शाम के 5:09 हो चुके हैं दोस्तों, और प्रोग्राम चल रहा है गुड इवनिंग कानपुर। और इस प्रोग्राम के ठीक बाद यानी कि शाम 6 विविधा में सुनिएगा प्रोग्राम अर्चना। इसके साथ ही शाम 6:30 पर प्रोग्राम गाने तराने में आज सुनिएगा कुछ गाने और उनके बनने के पीछे की दिलचस्प बातें। दोस्तों शाम 7 आपको लेकर चलेंगे अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे जयमाला, इंद्रधनुष, हवा महल, चित्रलोक जैसे सुपरहिट प्रोग्राम्स।

और भाई रात 9 बजे आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर होंगी मैं आपकी रेडियो संगनी रंजना। तो अपनी फरमाइशी ईमेल के साथ सुनने के लिए तैयार रहिएगा प्रोग्राम आपकी फरमाइश। और इसके बाद रात 10 बजे आपको फिर वापस ले चलेंगे मुंबई स्टेशन की ओर और वहां से आप सुनेंगे प्रोग्राम छाया गीत। और रात 10:30 पर ढलती जाए रात के साथ आपसे लेंगे विदा। लेकिन दोस्तों डीटीएच पर हमारा जो प्रसारण है आप सुन सकते हैं पूरी रात यानी कि 24 घंटे। गुड इवनिंग कानपुर, आप सुन रहे हैं मेरे यानी रेडियो संगिनी रंजना के साथ FM 103.7 पर।

और भाई ये जो कभी नीम नीम कभी शहद शहद इस वक्त हमारी हवाओं में घुला है ना, वो तो कमाल ही है। मौसम जो है वो आजकल एकदम नई नवेली रसोई जैसा हो गया है। कभी उबलती हुई गर्मी है तो कभी गुनगुनी गुनगुनाती सी शाम है, और कभी भाई ओले बेभाव नमक से आ जाते हैं तो कभी चीनी सी मीठी रिमझिम फुहार होती है। हाँ भाई, पिछले कुछ दिनों से तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि मौसम जो है कभी कम कभी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन जून का महीना है दोस्तों, साथ ही चल रहा है इस समय अधिक मास, तो भाई गर्मी जो है ना वो भी कुछ अधिक ही सताने वाली है इस वक्त, है ना।

0: मर गई गर्मी से ले चल शिमले बाबू मर गई।
1: तो क्या समझे, चलिए समझा देते हैं। तो आज का मौसम जो है ना, वो भाई इस वक्त अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो अधिकतम तापमान से बस 1 डिग्री ही कम है। और अगर मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो रात बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगा घटकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ह्यूमिडिटी इस समय 33% के आसपास है और भाई एयर क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और ख्याल के साथ मुझे याद आ गया कि आपको बता दूं, आज है 3 जून और आज हम मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। इसे 2018 को घोषित किया गया था और तब से लेकर अब तक ये निरंतर ही मनाया जा रहा है। और कारण जो है दोस्तों, वो यही है कि आपका ख्याल रखना। जी हाँ, परिवहन का तो एक किफायती साधन है ये, और हमारे स्वास्थ्य के लिए साइकिल जो है वो एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज भी है। और इसके साथ ही साथ साइकिल एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो क्या आपके पास साइकिल है, या कभी कभी आपने साइकिलिंग अभी करते हैं आप इस वक्त? मुझे लगता है कि बहुत पहले, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं, तो हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी साइकिलिंग ज़रूर की है। लेकिन वापस दौर आ गया है दोस्तों कि हम साइकिल को अपना लें और साइकिलिंग को शुरू कर दें, क्योंकि इस बार जो इस दिन की थीम है ना, वो भी है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो हमारे इन्वायरमेंट के को सेफ रखेगी ये और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाए रखेगी। तो भाई अपना ख्याल रखिए और कूल काम रहने के लिए सुनिए FM 103.7 विविध भारती कानपुर मेरे साथ।

भाई रेशम सी हवाएं हो या ना हो, लेकिन ये वक्त जो है ना वो है थोड़ा सा मुस्कुराने का, थोड़ा सा गुनगुनाने का, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़, ट्रैफिक, ऑफिस, दुकान, पढ़ाई के बाद यही टाइम होता है थोड़ा सा सुस्ताने का। तो काम की बातों के साथ हम लेकर आते हैं प्यार भरे शानदार गाने, ताजा हलचल के साथ ये गीत हमें देते हैं जिंदगी को खुलकर जीने का संदेश। तो भाई चाय पीते पीते आनंद लीजिए म्यूजिक का। FM 103.7 हम लेकर आ रहे हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे एक बेहद प्यारा सा गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
2: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।

और दोस्तों मनोरंजन के साथ साथ ना जानकारी भी बड़ी जरूरी है ना। तो आज चलिए बात करते हैं सूरज की और सूरज से मिलने वाली एनर्जी की। जिंदगी के लिए तो ये बहुत जरूरी है ही, साथ ही साथ घर को रोशन करने के लिए भी सूरज देता है सोलर एनर्जी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, जिसके तहत अपने घर में सोलर पैनल लगवाकर हम कर सकते हैं

हैं बिजली की बहुत सारी बचत, और हाँ बिजली बिल में भी बहुत सारी कमी आती है। और दोस्तों अब एक ऐसा गीत जिससे रोशनी होती है रूबरू।

आजकल तो भाई हवा जो है वो चल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, जहां देखो इसी की चर्चा हो रही है। और जो ऑनलाइन पेमेंट है ना, वो तो भाई हमारे आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। अब टेक्नोलॉजी ने सुविधा तो दी है हमें, लेकिन इसके साथ ही साथ फ्री गिफ्ट के तौर पर हमें दिया है साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आपको इससे क्या, आप तो जानते हैं कि OTP, बैंक का पिन या कोई भी पासवर्ड हम किसी के साथ भी हमें शेयर नहीं करना है, है ना। हम तो इतने स्मार्ट हमेशा से हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि इस समय कानपुर में जनगणना भी चल रही है, तो उसे जो रिलेटेड व्यक्ति हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आपके पास आते हैं, आपको लगता है और कहते हैं कि वो जनगणना के लिए आए हैं और आपसे किसी तरह का भी OTP मांगते हैं, तो आप याद रखिएगा कि आपको OTP नहीं देना है, क्योंकि जनगणना से संबंधित जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपसे कोई भी पासवर्ड या कोई भी OTP नहीं मांगते हैं। हाँ, जनगणना से जुड़ी हुई और जो जानकारी है वो हम आपको देते हैं इस ट्रैक के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

और दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि जनगणना मित्र जो हैं जब हमारे घर पर आते हैं तो आपको क्या करना है। तो भाई सबसे पहले तो आप उन्हें आराम से इज्जत के साथ बैठाइए, उसके बाद पानी वानी पूछिए, क्योंकि बहुत गर्मी में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो लोग, और किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और उसके बाद वो जो भी जानकारी आपसे मांगते हैं वो बिल्कुल सही सही सटीक जानकारी उन्हें दीजिए, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र सभी की, साथ ही मकान की स्थिति कैसी है और संपत्ति में क्या क्या है, ये भी उन्हें जरूर बताइए। और ये सब कुछ बताने से पहले एक काम जरूर करिए, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना तो उनका सरकारी आईडी कार्ड जरूर देख लीजिए, और उसके बाद भी डाउट आपका पूरा जो है वो नहीं जाता है, बना रहता है, तो उस आईडी कार्ड पर बना हुआ है एक बार कोड, आप उसे स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद आप संबंधित व्यक्ति की पूरी जानकारी जो है पा सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी आकर अगर आपसे ओटीपी मांगता है या पासवर्ड मांगता है तो हरगिज ना बताएं, लेकिन अगर आपने स्वगणना की है तो उसका 12 डिजिट्स वाला जो आईडी नंबर है वो उन्हें जरूर दे दें।

अब एक बात और दोस्तों कि कानपुर की जो पहचान है वो इसका इतिहास तो है ही, साथ ही साथ यहाँ के चाट चटकारों के साथ यहाँ का जो जोश मौज मस्ती है, इसकी मौज है, इसका जो है ना रुतबा वो अलग ही है। भाई कानपुरिये जहाँ भी जाते हैं ना अलग ही स्टैंड करते हैं और यही है इनकी खास और अलहदा सी बात। गुड इवनिंग कानपुर।

तो बातों, मुलाकातों और गीतों का ये कारवां अपनी मंजिल पर आ चुका है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये सुरीला और खुशनुमा सफर अच्छा लगा होगा। लेकिन दोस्तों, अभी कहीं मत जाइए क्योंकि सुरों का ये सफर अभी जारी है रंजना के साथ। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए FM 103.7 विविध भारती कानपुर। लेकर हाजिर होते हैं विविधा बस थोड़ी ही देर में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक सूचना सुनिए। चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु त्रैमासिक डाक अदालत का आयोजन चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12 जून 2026 दिन शुक्रवार को पूर्वाहन 11 बजे चीफ पोस्टमास्टर के कक्ष में किया जाएगा। डाक अदालत में प्रधान डाकघर कानपुर से संबंधित समस्याओं, शिकायतों, विशेषतः स्पीड पोस्ट सेवा, पंजीकृत वस्तुएं, बचत बैंक, धनादेश सेवा, पेंशन एवं अन्य संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ग्राहक अपनी समस्याओं, शिकायतों के निवारण हेतु डाक अदालत में उपस्थित होने के इच्छुक उपभोक्तागण अपनी समस्याओं, शिकायतों के पूर्ण विवरण सहित चीफ पोस्टमास्टर प्रधान डाकघर कानपुर के कार्यालय में दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार तक अवश्य उपलब्ध करा दें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त शिकायतों पर डाक अदालत में विचार नहीं किया जाएगा। डाक अदालत में सुनवाई हेतु नए मामले नहीं लिए जाएंगे, केवल उन्हीं मामलों को विचार हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है जिनका निस्तारण किसी कारणवश नहीं हो पाया है अथवा कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में प्रेषित शिकायत का विवरण भी प्रमाण स्वरूप साथ में संलग्न किया जाए। कृपया शिकायती पत्र लिफाफे के ऊपर डाक अदालत हेतु अवश्य लिखें। डाक अदालत संबंधित सूचना समाप्त हुई।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक विको वज्रदंती।
1: एक आवश्यक सूचना।

0: सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: विविधा में आज प्रस्तुत है अर्चना, लीजिए सुनिए मेरे यानी रेडियो संगिनी रंजना के साथ आकाशवाणी कानपुर के विविध भारती चैनल से 103.7 पर। तो चलिए मिलकर करते हैं अपने ईश की वंदना, जिनसे जुड़ा हुआ है हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा वैभव।

और इसके साथ ही अर्चना यहीं संपन्न होती है। आप सुन रहे हैं विविध भारती कानपुर FM 103.7 पर। थोड़ी ही देर में लेकर आएंगे प्रोग्राम गाने तराने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: चहेता मन भाता लहराता फोन इन प्रोग्राम हेलो कानपुर आ रहा है आप तक इसी शनिवार और रविवार को शाम 5 बजे से 103.7 पर रिकॉर्डिंग होगी दो दिन बुधवार और गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक। तो अपनी पसंद का गाना सुनने के लिए हमें कॉल करें 0512-254-1818 पर। हेलो कानपुर,
1: सुनिए आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी फरमाइश आ रहा है अब एक नए वक्त पर। अब आप अपनी फरमाइशें और सदाबहार गाने एंजॉय करें हर रात 9 बजे से 10 बजे तक। जी हाँ, रात 9 से 10 बजे तक सिर्फ 103.7 FM विविध भारती कानपुर पर। तो लिख भेजिए हमें अपनी रिक्वेस्ट, अपनी फरमाइश। लिखिए अपना नाम व पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं आकाशवाणी कानपुर के नाम से। हमारा टेक्स्ट हैंडल है @AIR कानपुर और मेल आईडी है AIR KANSOMEDIA@gmail.com। अपनी फरमाइशें आप हमें चिट्ठियों के माध्यम से भी भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता नोट करें, द्वारा केंद्र निदेशक विविध भारती सेवा आकाशवाणी कानपुर 208002। तो जल्दी से लिख भेजिए अपना फरमाइशी गाना इसी पते पर।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का आवाज अल्फाज और एहसास की इस दुनिया में जिसे आपने ट्यून किया है FM 103.7 पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती कानपुर और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना। दोस्तों शाम के 6:30 हुए हैं, समय हो गया है प्रोग्राम गाने तराने का। और दोस्तों गाने तराने में आज गीतों के साथ साथ जानेंगे उनके बनने के पीछे की रोचक बातें, क्योंकि हर गीत की होती है अपनी एक कहानी।

दोस्तों, भारतीय सिनेमा में अब तक का सबसे रोमांटिक गीत है ये, लता मंगेशकर की आवाज और मदन मोहन का संगीत। और ये जो इतने गहरे भावों से भरे हुए शब्द है ना, इन्हें लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद नहीं था। मदन मोहन साहब ने जब ये गीत और इसकी धुन प्रोड्यूसर्स को सुनाई तो भाई इसे सिरे से खारिज कर दिया गया, यानी कि इसने फेस किया रिजेक्शन। लेकिन मदन मोहन जी को इस गीत पर इतना यकीन था कि उन्होंने इस गीत को फिल्म में लेने की जिद की। इस फिल्म में गीत को लिया गया। और फिर देखिए, आपने खुद ही देखा है कि साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बना। खुद लता मंगेशकर ने भी इस गीत को अपने सबसे पसंदीदा गीतों में से एक बताया और उन्होंने कहा कि ये गीत इस वक्त जितना पॉपुलर है ना, 50 साल बाद भी ये गीत उतना ही ताजा लगेगा। और देखिए, आज 60 सालों बाद भी इस गीत का जादू जो है वो पूरी तरह से कायम है। अब दोस्तों, एक गीत और सुनिए और फिर बताते हैं इसके बनने के पीछे की कहानी।

भाई, जो लोग कहते हैं कि पुराने गीतों में गजब का चार्म था, तो जनाब वो 100% सच कहते हैं, और ये बात प्रूव हो जाती है इस गीत को सुनने के बाद। जी हाँ, श्री 420 फिल्म का ये गीत है, और ये गीत ही सिर्फ मशहूर नहीं हुआ बल्कि वो जो सीन था ना, रोमांटिक सीन, वो भी आइकॉनिक बन गया। रिमझिम रिमझिम बारिश और एक छाते के नीचे गीत गाते हुए लव कपल, यानी कि नरगिस और राज कपूर साहब। छाते वाला ये जो सीन है, इसे शूट किया गया था सिर्फ और सिर्फ एक टेक में, और इसमें पहली बार नजर आए थे राज कपूर साहब के बच्चे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और रितु कपूर। कहा जाता है कि नरगिस ने बच्चों को चॉकलेट का लालच दिया और तब जाकर वो माने थे शूटिंग पर आने के लिए। और इस फिल्म में, इस गीत में जब बारिश हो रही है ना, एक आर्टिफिशियल रेन है, और इन बच्चों को वहाँ से जाते हुए दिखाया गया है। और इस शूटिंग के दौरान ये जो आर्टिफिशियल रेन दिखाई गई थी, आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी, उसके लिए यूज़ हुआ था हजारों लीटर पानी। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, और शंकर जयकिशन ने इसे कंपोज किया था। आवाजें तो आप इसमें पहचान ही गए होंगे, जी हाँ, लता मंगेशकर और मन्ना डे की। तो चलिए अब अगला गीत सुनवाती हूँ आपको, और उसके बाद आप बताइएगा कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसके पीछे की कहानी। तो हमें जल्दी से ईमेल कीजिए AIRKANSOMEDIA@gmail.com पर।

दरअसल ये जो गीत है ना, ये साहिर लुधियानवी की एक कविता है जिसे उन्होंने फिल्म आने से बहुत साल पहले लिखा था। ठीक इसी तरह खयाम साहब ने ये धुन भी बहुत पहले ही तैयार कर ली थी। फिर जब फिल्म की बात चली और यश चोपड़ा ने संगीत की कमान खयाम साहब को सौंपी तो उन्होंने यही पुरानी धुन निकाली और साहिर साहब को धुन और

गीत के हिसाब से कविता में थोड़ा फेर बदल करने के लिए रिक्वेस्ट की। सहसा मान गए और फिर इस गीत के दो वर्जन हमारे सामने आए, एक मुकेश का सोलो और एक जो अभी अभी आपने सुना मुकेश और लता जी का डुएट। और इसका सबसे ज्यादा जो आकर्षण था ना वो था अमिताभ बच्चन वाला हिस्सा जिसमें उनकी अपनी ही आवाज ली गई है और गीत गाया है मुकेश ने। साथ ही इसमें है कश्मीर की हसीन वादियां। और दोस्तों इस गीत को मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट और बेस्ट म्यूजिशियन का फिल्म फेयर अवार्ड। और दोस्तों अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ना इसकी कहानी जानने की उत्सुकता आई है आप सभी की ओर से। केशवपुरम कानपुर से हैं अमित, आन्या, वान्या, परी, अनिल और अनूप, और ये जानना चाहते हैं कि इस गीत के बनने के पीछे की दिलचस्प कहानी क्या है। तो लीजिए भाई पहले सुनिए ये गीत और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके बनने के पीछे का राज और इसके बनने के पीछे की प्रक्रिया।

आराधना फिल्म का ये गीत जिसे फिल्माया गया था राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर। और मैं जानती हूँ कि इस गीत को अभी आपने सिर्फ सुना ही नहीं होगा दोस्तों, बल्कि इसे देख भी लिया होगा, क्योंकि गीत शुरू होते ही इसका जो विजुअल है ना, वो हमारे दिमाग में अपने आप ही आ जाता है। जी हाँ, जीप चलाते हुए राजेश खन्ना और ट्रेन में बैठी हुई किताब पढ़ती हुई शर्मिला टैगोर। ये गाना सिर्फ अपनी धुन और बोलों के लिए ही नहीं जाना जाता है दोस्तों, बल्कि दार्जिलिंग में चलती ट्रेन के सीन के लिए भी ये गीत मशहूर हुआ। खास बात यह है कि जितना लोकप्रिय ये उस समय में था, उतना ही ट्रेंड में आज भी है। और जिस ट्रेन में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी ना, उसे कभी पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता था, वो आज जयपुर के एक बड़े होटल की लाउंज बार बन चुकी है। गीत की खास बात यह भी है कि इसे अलग अलग जगहों पर शूट किया गया था, साथ ही राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के सीन भी अलग अलग शूट किए गए थे। बाद में इन्हें एडिटिंग के जरिए जोड़ा गया और गीत हमारे सामने आया। इस गीत को गाया किसने था ये अब आप बताइएगा, साथ ही बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में हम इस तरह के गीत और गीतों से जुड़ी हुई जानकारियां आपके लिए लेकर आएं या ना लेकर आएं, ये बात आप ही तय करेंगे। तो चलिए अब चलते चलते सुनवा देते हैं आपको एक और गीत।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत दोस्तों आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। जानकारी जुटाइए और हमें भी बताइए। ईमेल एड्रेस airkankansomedia@gmail.com पर। तो अब तक मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना, FM 103.7 विविध भारती कानपुर से। अब चलते हैं अपने मुंबई केंद्र की ओर और सुनते हैं वहां का प्रसारण। मैं आपको मिलूंगी रात 9 बजे, लेकर आऊंगी आपकी फरमाइश। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं आकाशवाणी FM 103.7 विविध भारती कानपुर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम का अगला गीत जाबाज फिल्म से है। इसे गाया है मनहर ने। गीत इंदिवर का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।
3: पिछले 6 वर्षों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत 75 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। साथ ही ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता भी प्रदान की गई है। आज देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, जिनमें करीब 46% महिलाएं हैं, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। पीएम स्वनिधि के 6 साल, उत्साह, सम्मान, स्वाभिमान।
4: अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गाना। गीत लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आपने सोल्जर फिल्म का गाना सुना सोनू निगम की आवाज में। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन फिल्म का गाना। गीत समीर का है, संगीत संजीव दर्शन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने इंद्रधनुष के अंतर्गत रागों पर आधारित कार्यक्रम राग अनुराग। पहला गाना हमने राग अहिर भैरव पर लिया है, इसे गाया है मन्ना डे ने। गीत शैलेंद्र का है, संगीत एस सी बर्मन का, फिल्म का नाम मेरी सूरत तेरी आंखें

अगला गाना गौड़ मल्हार राग पर आधारित है, इसे हमने लिया है फिल्म बरसात की रात से। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट, गीत साहिर का है, संगीत रोशन का।

आइए अब सुनते हैं राग मृष शिवरंजनी का ये गाना। इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का है, फिल्म का नाम है महबूबा

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आई है क्या?
4: हाँ हाँ आई है।
3: अच्छा अभी लाया। ये लीजिए।
4: हाँ।
3: ये रही आपकी चिट्ठी।
4: हाँ।
3: अब इस खुशी में मुझे भी एक चाय पिला दीजिए।
4: अरे हाँ भाई हाँ। अब मैनेजर साहब मेरे नाम पर एक चाय रंगू को भी। अच्छा रंगू मैं चलता हूँ।
3: अच्छा भैया।
4: देखने से तो ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी मनिया की ही है। पिछली बार भी ऐसा ही लिफाफा भेजा था। द्वारका को भी आज ही डांडी मारना था। किससे पढ़वाऊं? अगर चिट्ठी मनिया की निकली तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बस अब सीधे घर चलता हूँ। आज हाफ डे की रजा ही सही।

0: अरे सिद्धू इतनी जल्दी? हाँ। भाई तबीयत तो ठीक है?
1: आज हाफ डे ले लिया बिहारी।
0: आखिर बात क्या है?
1: मनिया की चिट्ठी आई है।
0: ओह, क्या लिखा है?
1: अब मैं क्या जानू क्या लिखा है, द्वारिका आज काम पर आया ही नहीं।
0: अरे भाई तू लक्ष्मण से पढ़वा लेते।
1: देखो बिहारी, लक्ष्मण वही काम करता है जो मैं करता हूँ, बल्कि जो मशीन लक्ष्मण से ठीक नहीं होती उसे मैं चला रहा हूँ। लेकिन उसी काम के लिए उसे 1,500 रुपए मिलते हैं और मुझे 1,000 रुपए। मैं उससे मनिया की चिट्ठी नहीं पढ़वाऊंगा, वो हंसेगा नहीं।
0: अरे बुद्धू, कहाँ पढ़ा लिखा लक्ष्मण और कहाँ अंगूठा छाप तुम। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में हुनर है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट जो है, कितना फर्क है तुम दोनों में।
1: हाँ, उतना ही जितना आदमी और जानवर में है।
0: नहीं नहीं नहीं सिद्धू, मैं ये नहीं कह रहा।
1: और नहीं तो क्या, मशीन पर लिखा हुआ मशीन का नाम जब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं अंधा हूँ।
0: देखो,
1: आंख रहते हुए भी अंधा।
0: देखो सिद्धू, हाँ? इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तुम रोज रात को पढ़ने तो जाते ही हो।
1: हाँ?
0: थोड़े दिनों में सब सीख जाओगे।
1: अरे जब सीखूंगा तब सीखूंगा ना, आज तो नाव भंवर में फंस गई।
0: मैं सिद्धू, अगर तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी होती,
1: हाँ?
0: तो मैं जरूर पढ़ देता, लेकिन मनिया की चिट्ठी तुम तो जानते ही हो।
1: अरे जानता हूँ कि मनिया के पिताजी तुम्हारे पिताजी के यहाँ शादी की बात करने गए थे, लेकिन अब तो बात खत्म हो गई ना।
0: बात किसने खत्म की?
1: अरे तुम्हारे पिताजी ने, उनको पूरा दहेज चाहिए था।
0: तुम्हें तो मालूम है मैंने पिताजी को कैसा पत्र लिखा था। मनिया जैसी सुंदर गुणी पढ़ी लिखी लड़की से दहेज लेकर उन्होंने ये सब सोचा ही कैसे।
1: अब जाने भी दो बिहारी, सुबह की आई ये चिट्ठी, अब पढ़ भी दो यार।
0: अच्छा लाओ लाओ।
1: हाँ।
0: हाँ सुनो।
1: हाँ।
0: मेरे प्यारे वो। भाई वाह, इस वो का जवाब नहीं यार।
1: आगे क्या लिखा है?
0: लिखा है आपका लिखवाया हुआ पत्र मिला। पत्र किससे लिखवाया था?
1: द्वारका से। पढ़ो पढ़ो।
0: आप राजी खुशी हैं ये जानकर बड़ी खुशी हुई। एक आध गलत

0: है, फिर भी राइटिंग बहुत अच्छी है।
1: राइटिंग मैं क्या जानू,
0: सो तो है। हाँ, हाँ सुनो, आप रोज रात को पढ़ने जाते हैं ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ। जिस दिन आपके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिलेगी, हाँ, उस दिन शिवालय में प्रसाद चढ़ाऊंगी।
1: वाह,
0: देखो मुझे प्रसाद देना मत भूल जाना।
1: अरे भैया तुम्हारा मुंह तो सबसे पहले मीठा करवाऊंगा।
0: आगे समाचार ये है,
1: हाँ,
0: कि तुम्हारे गांव का एक लड़का है बिहारी, तुम्हारी फैक्ट्री में,
1: हाँ,
0: अपनी बिरादरी का ही है। मेरे पिताजी कभी बिहारी के पिताजी से मेरी और बिहारी की शादी की बात चलाने गए थे। दहेज की मांग पर बात टूट गई थी। हमारी बिरादरी में तो कभी दहेज का लेन देन हुआ ही नहीं। वे लोग अब खुद मेरे पिताजी से मिले, बोले हम बिना दहेज से शादी करने को तैयार हैं। उनके जाने पर मैंने भाई से साफ साफ कह दिया कि अब मैं तैयार नहीं। मैंने ये भी बता दिया कि पिछले महीने मेले में मैंने सिद्धू को देखा है, मुझे पसंद है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या, पढ़ लिख जाएगा, माँ के पेट से थोड़े ही कोई पढ़कर आता है। तुम बिहारी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। मेरी गाय को बछड़ा हुआ है। चिट्ठी का जवाब जाने दो, क्या कहूँ, तुम्हारी मनिया। देखा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था।
1: अरे अब जाने दो, अब एक काम और करो, जैसे उसकी चिट्ठी पढ़ दी है ना, वैसे ही मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दो।
0: ना बाबा ना, मुझसे नहीं लिखी जाएगी।
1: अरे क्यों नहीं लिखी जाएगी?
0: मान लो,
1: हाँ,
0: मनिया के पिताजी मेरे पिताजी की बात मान गए तो?
1: अरे तब तो मनिया को और अच्छा वर मिल जाएगा। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक चिट्ठी पूरी कर देना है।
0: ना ना ना ना, ना। तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा।
1: अरे भैया बोलना क्या, मन की बात नहीं बोली जाती, समझ लो कलम तुम्हारी मन मेरा। अच्छा अब मैं निकलता हूं।
0: कलम तुम्हारी मन मेरा, ऐसा कहीं होता है? हो सकता है, कलम तुम्हारी मन मेरा।
2: यही है, बस यही है, विकास उद्योग लिमिटेड, हिंदी में भी यही है और अंग्रेजी में भी वही। चौकीदार साहब, विकास उद्योग लिमिटेड यही है ना?
3: हाँ यही है। क्या काम है?
2: मुझे सिद्धू से मिलना है।
3: बहन जी उस हाल में बैठ जाओ, मैं सिद्धू को अभी बुलाता हूँ।
2: हाँ
1: अरे मनिया, तुम यहाँ कब, कैसे?
2: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं मनिया, यहाँ अभी अभी ऐसे ही।
1: अरे ऐसे ही मेरा मतलब है कैसे?
2: गांव से सीधे बस से आई, चिट्ठी बनकर।
1: चिट्ठी बनकर?
2: मुझे जब तुम्हारी चिट्ठी यानी तुम्हारी ओर से बिहारी की चिट्ठी मिली,
1: हाँ,
2: और जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तभी तय कर लिया, अब तुम्हें चिट्ठी तभी लिखूंगी,
1: हाँ,
2: जब तुम उसे पढ़ने लायक हो जाओगे।
1: हाँ।
2: और सुनो,
1: हाँ,
2: तुम भी मुझे अपने हाथ से ही चिट्ठी लिखोगे।
1: हाँ।
2: महीने दो महीने जितना भी लग जाए, समझे?
1: ठीक है,
2: मैं इंतजार करूंगी।
1: अच्छा,
2: आगे पूरी जिंदगी पड़ी है।
1: हाँ।
2: तुम सिद्धू हो कि बुद्धू, चिट्ठी लिखी और पढ़ी जाती है।
1: हाँ।
2: जो लिखाई और पढ़ाई जाती है वो चिट्ठी नहीं रह जाती।
1: अरे बात क्या है, कुछ बताओगी भी कि बस पहेली ही बुझाती जाओगी?
2: बस यही समझ लो कि मैं चिट्ठी पढ़ती जा रही थी।
1: हाँ।
2: और मेरे पैरों के नीचे धरती कांप रही थी।
1: हाँ?
2: उफ, कितनी गंदी भाषा थी।
1: गंदी?
2: तुम्हारी होती तो चलती, लेकिन किसी और ने ऐसी चिट्ठी लिखी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुशासन मेरा चीरहरण करना चाहता हो।
1: हाँ?
2: फिर तो मैंने कान पकड़े, चिट्ठी लिखने का मन हुआ तो खुद चिट्ठी बनकर आ गई।
1: हाँ।
2: अच्छा अब अपनी कहो, कैसे हो, कहाँ रहते हो?
1: अरे देख तो रही हो, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ सुनो, मैंने अपना कमरा भी ले लिया है।
2: अच्छा,
1: फैक्ट्री की कॉलोनी में।
2: अच्छा,
1: तुम्हें मालूम नहीं एक महीने से ऊपर हो गए।
2: सच?
1: हाँ?
2: मुझे दिखाओ ना।
1: ठहरो, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ से सीधे बस जाती है।
2: अच्छा।
1: हाँ।
2: कितनी अच्छी बस है ना?
1: फैक्ट्री की बस इससे भी अच्छी है, रोज हम उसी से काम पर आते जाते हैं।
2: तुम काम पर नहीं हो तो पैसा कट जाएगा?
1: अरे मेरी सारी छुट्टियां बाकी हैं, इसलिए कभी कभी हाफ ले लेता हूँ। शादी के लिए सब छुट्टी बचा रखी है।

0: चलो हटो, तुम बड़े वो हो।
1: ये देखो, ये रहा तुम्हारा कमरा।
0: कितना अच्छा है। सब पक्का है। और खिड़की भी है। अरे की क्या है ये चिट्ठी? किसकी?
1: पढ़ के बताओ।

0: चलो किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं, जरूरत पड़ने पर रघु गवाही दे सकता है। हाँ
1: तो आओ मेरे साथ।
0: चलो।
2: अरे आओ आओ सिद्धू भैया आओ, मेरी चिट्ठी मिली होगी।
0: हाँ।
2: क्यों भैया ब्याज देने आए हो कुल मिला के?
1: ब्याज देने नहीं, पूरा हिसाब करने आए हैं।
2: आप सिद्धू की कौन लगे हैं बहन जी कुल मिला के?
1: मैं इनकी होने वाली वो हूँ।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कुल मिला के।
1: इन्होंने कितना कर्ज लिया था?
2: कर्ज को की है बहन जी, जो लियो है दे देगो, फिर भी आप कह रहे हैं तो बताए देता हूँ। बहन जी 5,000 रुपए लिए थे इसने।
0: 5,000 रुपए?
1: आप चुप रहिए। हाँ तो सेठ जी, 5,000 में 5 के आगे कितने शून्य होते हैं?
2: आप तो मजाक कर रहे हैं बहन जी, 5,000 रुपए मत बल्कि 5 के आगे 3 शून्य होंगे कुल मिला के।
1: जैसे 5 का 5,000 बनाया, वैसे ही 1 शून्य और बढ़ाकर 50,000 क्यों नहीं कर लिया आपने?
2: ठीक हो बहन जी, बरसों को रोजगार है मारो। बहन जी झूठ काहे को बोलूंगो, ए देखो सब लिखा पड़ी है हमारे पास, सिद्धू के अंगूठे की निशानी भी है कुल मिला के।
1: लिखा भी आपका है और पढ़ा भी, और ये तो अनपढ़ हैं, इनके साथ जो रघु जी आए थे वो भी अंगूठा छाप है, उन्होंने भी कहा है कि 500 रुपए लिए थे, सारी सोसाइटी को भी मालूम है। अच्छा अब हम लोग पुलिस थाने जा रहे हैं, गवाह हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
2: पुलिस पुलिस को की करना है बहन जी, आपस में बैठ के सुलझा लेंगे कुल मिला के। आप तो बहन जी उल्टी गंगा बहावे हैं।
1: आपको सीधा करने के लिए उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
2: मैं तो मर जाऊंगा बहन जी, मारो धंधो चौपड़ हो जाएगो हो। माफ करियो बहन जी, माफ कर दियो।
1: ये लो 500 रुपए और भरपाई का रसीद दो।
2: अभी दिए देता हूँ बहन जी, अभी दिए देता हूँ। आज किसको मुंह देखो तो सवेरे सवेरे कुल मिला के।
1: सूद भी दू क्या?
2: सूद को की करो है बहन जी, सूद को की करो है। आप मेरो पिंड छोड़ो छोड़ो, कुल मिला के जान बची तो लाखों पाए। एलो रसीद ले लो, पढ़ लियो कुल मिला के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
1: आप मुझे बस पर बैठा दो, मैं गांव चली जाऊंगी।
0: मनिया एक बार कमरे में चलो ना।
1: नहीं अभी नहीं।
3: चिट्ठी। हवा महल में अभी आप नंदलाल पाठक की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया CB मंडावी ने। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम चित्रलोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म रांझना से। इसे गाया है जावेद अली, कीर्ति सगथिया और पूजा ने। गीत इशाद कामिल का है, संगीत ए आर रहमान का।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमान

0: विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा

0: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
1: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हू लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर।

तो इस्तकबाल है आप सभी का आवाज अल्फाज और एहसास की इस दुनिया में जिसे आपने ट्यून किया है FM 103.7 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो संगिनी रंजना और लेकर आ गई हूं आपकी पसंद का प्रोग्राम आपकी फरमाइश। तो दोस्तों आपकी फरमाइश भेजे हुए कुछ पत्र मेरे हाथ में आ चुके हैं और इंदिरा विहार रायगढ़ से ये हैं अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्ला नूरजहां, राज नांदगांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिवा तिवारी, इसके अलावा प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से, देविन तालाब लालपुर शिवराजपुर कानपुर देहात से हैं TS चंदेल, टीपू सिंह चंदेल, दीपू सिंह चंदेल, रौनक सिंह चंदेल, कार्तिक और निष्ठा सिंह चंदेल, और आपके लिए आ रहा है ये एक बेहद खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है, तो इसे गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अच्छे बुरे हर वक्त में संभल कर रहिए। भाई बुरे वक्त में संभल कर रहिए, लेकिन अच्छे वक्त में और भी ज्यादा संभल कर रहिए। बुरे वक्त में घबराइए नहीं और अच्छे वक्त में इतराइए नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी अगली फरमाइश। तो रामलीला मैदान सचिंडी से हमारे पास खत आया है बाबा शिवानंद त्रिपाठी का, और इनके साथ हैं शशि त्रिपाठी, शिवांश त्रिपाठी, मनु, मीनाक्षी, सौरभ त्रिपाठी, गौरव, अमन, पीए और अभिजीत सिंह सांगा। सनावत से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं शेख मूसा, मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना, और आप लिखते हैं कि प्यार भरा आदाब रंजना दीदी, आप खैरियत से तो हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल खैरियत से हैं, पूरी तरह से। आपकी दुआएं जो हैं वो हमेशा हमारा ख्याल रखती हैं। पूर्वा पिंडौर रायबरेली से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं जितेंद्र पाल, सम्राट पाल, विराट, अशोक, पीयूष और सकुना पाल। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं हमारे श्रोता दोस्त ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। और हम आप सबके लिए लेकर आए हैं आपकी फरमाइश पर एक बेहद प्यारा सा गीत, लीजिए सुनिए।

दोस्तों, एक बड़ा ही प्यारा सा लेटर आया है हमारे पास। बहुत खूबसूरत ड्राइंग इसमें उन्होंने बनाकर भेजी है, लेकिन कमी क्या रह गई है? कमी ये रह गई है कि ये अपना नाम लिखना ही भूल गए हैं। और बस ये कहूंगी कि बहुत खूबसूरत है आपका पत्र, भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई हमें अपना नाम, आप जहां से हमें पत्र लिख रहे हैं, जहां पर आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उस जगह का नाम और आपकी फरमाइश हमें लिखकर जरूर भेजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है AIRKANSOMEDIA, यानी कि AIR consomedia@gmail.com। और दिल्ली शहर मोरी गेट से हमारे पास एक लेटर आया है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। इसके अलावा गाजियाबाद यूपी से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं रोहित जयमंत्री बेलदार, फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, अस्मा और डब्लू वली बेलदार। इनके अलावा हैं रंजना बहन जी को प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्ते। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और आपको आपकी पसंद के नगमे हमेशा सुनवाते रहेंगे। तो शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, आसिफ अली, बेबी आयशा, मोहम्मद हुजैफा सांगर आप हैं, कहां से इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है। खैर कोई बात नहीं, अगर आप जगह का नाम लिखेंगे तो हम जान पाएंगे कि आप हमारे साथ कहां से कनेक्ट हुए हैं, अदरवाइज आप अपनी फरमाइश के गीत तो यहां पर सुन ही रहे हैं। ये गाना आप सभी के लिए है।

कस्बा अमरोधा उत्तर प्रदेश से अब्दुल जब्बार राइन, तारिक आरिफ अकेब राइन, सईद अनवर, हमजा, आयशा, आयजा, आरफा और आप हैं रेशमा बेगम जब्बार मोहम्मद। तो इनका पत्र हमारे पास आया है। इसके अलावा हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, आपने लिखा है। आदरणीय मैडम जी, आपको हार्दिक नमस्कार, आपको भी नमस्कार। बेहतरीन प्रस्तुति के साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रही हैं, हम भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं, बड़ी शिद्दत से लाइव आपको सुन रहे हैं। एक नज़र हम पर भी ज़रा गौर फरमाइएगा, हम भी इंतज़ार में हैं और हम भी कतार में हैं। क्या बात है भाई, एकदम काफिया बंदी में आपने हमें ये मैसेज भेजा है और बिल्कुल मुझे कविता जैसी फीलिंग आ रही है आपके इस संदेश को पढ़ते हुए। राशिद हुसैन अंसारी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, इन्होंने इतनी सारी हमें मेल भेज दिए हैं कि इनकी जो असल वाली मेल है वो कहीं पर छुप गई है। प्यारी सिस्टर आरजे रंजना जी, आपको हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी हमारा आदाब। किसी भी सदाबहार नगमे में आप हमें शामिल कर लें, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से आप हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, और ये गीत आ रहा है आप सभी के लिए। और इस गीत को प्ले करूँ उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त एक और मेल आ चुकी है। गांव जाखोत से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, और आपने भी हमें नमस्कार भेजा है और दुआओं में याद किया है, आपको भी हमारा नमस्कार। और यूं ही हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी फरमाइश, FM 103.7 विविध भारती कानपुर से।

दीदी को प्यार भरा बड़ा नमस्कार। भाई कितना बड़ा नमस्कार है ये बताइए पहले तो। और ये बड़ा सा नमस्कार हमें भेज रहे हैं गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, और आप हैं राम रतन टॉकीज कुंडलवाड़ी से। और आप लिख रहे हैं कि आज तो शाम सुहानी हो गई है, हमारे को नज़रअंदाज मत करो दीदी। अजी हम आपको कैसे नज़रअंदाज करेंगे साहब, आप हैं तभी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ कि आपको शामिल कर सकूँ, आपके पत्रों को पढ़ सकूँ, आपके ईमेल्स को पढ़ सकूँ। और यकीन जानिए जब हम आपके मैसेजेस को पढ़ रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारे पास ये पत्र आए हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरिंग।

दिल्ली से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा का, और इसके अलावा माजिदा बेगम, एम नईम, सलमान अंसारी, कामनी बेगम, रफत हबीब, अली हैदर, नदीम, फहीम, अकेला, अनीसा, इकरा, नफीसा, माजिदा, नईम, और आप हैं मूसा नगर से। और जैसे कि ये पत्र हमारे पास आए हैं, और इन पत्रों को आने के लिए एक एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि आपको हमें अपनी फरमाइश भेजनी है पोस्ट कार्ड पर लिखकर, और पते में आपको लिखना है आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, विविध भारती सेवा, आकाशवाणी कानपुर, और हमारा पिन कोड है 208002। तो आप इस पर हमें अपनी फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है aircansomedia@gmail.com। एक बार फिर से बता देती हूँ, aircansomedia@gmail.com। और इसके अलावा बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से। इसके अलावा और भी कई सारी मेल्स हमारे पास पॉपअप हो रही हैं, एक ले लेती हूँ मैं फटाफट। ये हैं नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवाकर, निर्मला विशाल, सोपान तायड़े, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहरकर, और आप सभी के लिए आ गया है ये गीत।

कृष्णा घोकड़े, प्रशांत शिंदे, ऋषि, यशराज, सुनीता शिंदे और आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। इसके अलावा और बहुत सारे श्रोता मित्र हमारे इस वक्त आ चुके हैं। रेडियो संगिनी रंजना यादव महोदया, प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप हैं ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से अनिल कटियार, डिम्पी कटियार, गौरव, सौरभ और खुशी कटियार। तखतपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और आप सबकी फरमाइश पर ये गीत हमने अभी क्यों कर लिया है, लेकिन जो पत्र हमने शामिल किया है अभी उठाया था उसको एक बार शामिल कर लेते हैं, बता देते हैं कौन कौन श्रोता हैं जिन्होंने ये पत्र हमें लिखकर भेजा है बेहद प्यार के साथ। तो आप हैं मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, इमरान अहमद रायनी, मंतशा अहमद रायनी, इंजमाम अहमद रायनी, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी और आर के कानपुरी। आप सभी न्यू भारत रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं और आप ये पत्र हमें भेज रहे हैं न्यू मोहल्ला कानपुर यूपी से। और आपके लिए आपकी पसंद का गीत आ रहा है यहाँ।

एक ईमेल हमारे पास अभी आया है और इस पर लिखा है कि हो सके तो हमारा खत शामिल करने का कष्ट करें। कष्ट? नहीं जनाब, हम आपके खत को बहुत खुशी के साथ शामिल करेंगे। कभी-कभी देर हो जाती है, उसके लिए माफी मांगते हैं। और आप हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवर्णकर, राही सरिता गवर्णकर, सिद्धांत और अर्जुन गवर्णकर। इनका नाम टुक टुक भी है, बड़ा प्यारा नाम है ये तो। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं। वैशाली शैलेश गवर्णकर, सुमित गवर्णकर, ध्वनि और एकांश गवर्णकर। इसके साथ हमारे और श्रोता जो कनेक्ट हुए हैं उनका नाम मैं लेना चाहूंगी। आप हैं शास्त्री नगर बीड शहर से आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया साईराज और विशाल सपकाल। कई सारी बहनें हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। शुक्रिया भेजा है उन्होंने। और उनके नाम हैं मुसर्रत जहां नाज, आप एक टीचर हैं, तलत जहां नाज, फरत जहां नाज, रिफत जहां नाज, नुजहत जहां नाज और हैं साजिया शाहीन नाज। इनके अलावा नाजिया नूरी नाज। और आप हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं नूर महल महसूल सीतामणि बिहार से। और आपके लिए जो गीत हमने निकाल कर रखा है आपकी रिक्वेस्ट पर, वो है यहाँ।

और अगली रिक्वेस्ट के लिए देखिए हमारे पास लेटर आ चुका है गरीब नवाज कॉलोनी वंदना नगर इंदौर से, रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। इनके अलावा विकास बनसोडे, रेखा आदिति बनसोडे, वैभव शिंदे आप हमारे साथ जुड़े हैं मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से, हिल स्टेशन खंडाला से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे, मनाली हिमाचल से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं हर्ष विनय विनीत और रोजस भाई, चंडीगढ़ से हैं शेफाली शेफी डेविस विमला और सतीश अनेजा, इनके अलावा जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। अगेन मेल हमारे पास रिपीट हुई है, इसको हम हटा देते हैं साइट पर। और आदरणीय होस्ट जी नमस्कार, प्लीज प्लीज प्लीज किसी भी प्यारे से गीत में हमें शामिल कर लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज प्लीज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप

कि जब मैसेजेस आते हैं तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और जब आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। यकीन जानिए, आप हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना। लीजिए आपको सुनवाते हैं ये एक बेहद प्यारा सा गीत।

और दोस्तों एक बड़े ही प्यारे से गीत की फरमाइश हमारे पास आई है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से देविका चौधरी, कविता संजय वाणी और मनीष वाणी की। और हमारे साथ इस वक्त जो कनेक्ट हुए हैं ईमेल के माध्यम से वो हैं मनाली से विनय शेफाली चंडीगढ़ से, और ये रिपीटेड ईमेल हमारे पास आई हुई है। इसके अलावा हैं हमारे साथ इस वक्त शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा कहने वाले हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन और दीपांशु खोरवाल। और इन्होंने कहा है कि मेल शामिल करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आप मतलब क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, मतलब ये जो हमारे रेडियो के साथ आपकी मोहब्बत है ना, उसने आपको ये कॉन्फिडेंस दे रखा है कि भाई मेरा मेल तो ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि आपने पहले ही अपना शुक्रिया हमें भेज दिया है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लीजिए सुनवाते हैं आपको ये एक बेहद प्यारा सा गीत।

और अब बस इतना ही दोस्तों कि एक कांच का टुकड़ा थी बेशक मगर मैं, एक कांच का टुकड़ा थी बेशक मगर आपकी चाहतों ने मुझे कोहिनूर बना दिया। थैंक यू सो मच, आपकी फरमाइश का सिलसिला बस अब यहीं रुकता है। और चाहतों का ये सफ़र आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने ये सफ़र तय किया मेरे यानी रेडियो संगिनी रंजना के साथ FM 103.7 पर।

0: और अब हम आपको लेकर चलेंगे अपने मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रोग्राम छाया गीत, लेकिन थोड़ी ही देर में।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
2: इसका सलूशन?
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है, हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा। हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं,

0: छाया गीत कार्यक्रम में लेते हैं अब एक अंतराल।
1: टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल नेचुरल है।
2: इसका सलूशन
1: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे। वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है।
1: नेचुरल ब्यूटी वॉश।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो जौक साहब फरमाते हैं, इश्क का जौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो दिखाई दे।

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: पिंपल, टीनेज में पिंपल्स नहीं आएंगे तो कब आएंगे? चिल, नेचुरल है।
3: इसका सलूशन?
2: वो भी नेचुरल है, वीको का टर्मरिक फेस वॉश, हल्दी के असरदार एंटीऑक्सीडेंट्स और कर्क्यूमिन के साथ। ये बैक्टीरिया को मिटाए और पिंपल्स, एक्ने और ब्लैकहेड्स दूर रखने में मदद करे।
3: वाओ, सो ब्यूटीफुल,
2: नेचुरल है। नेचुरल ब्यूटी वॉश।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र FM 103.7 पर। इस समय रात के 11 बजे हैं। अब हमारा आज का ये प्रसारण यहीं संपन्न होता है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी है विविध भारती का कानपुर केंद्र एफएम 103.7 पर। इस समय रात के 11 बजे हैं। अब हमारा आज का ये प्रसारण यहीं संपन्न होता है। कल सुबह 5:50 पर अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।